पे मेहंदी अपने नाम की सजाए। तो बिल्कुल जनाब, मैं तो इस तरह सॉन्ग सुनता हूँ, लेकिन पश्तो वाले सॉन्ग सही होते हैं यार, पख्तो दरबान हो रहा। हाँ जी, पख्तो सॉन्ग दरबान हो रहा, अलग ही शान दरबान हो रहा, हमारे डेर खुले सॉन्ग देखा जी, तासो में एंजॉय करिए। हाय हाय, स्पेशली दिस सॉन्ग डेडिकेट टू माय स्वीट ब्रदर अब्दुल कादू के लिए। जो पसना या वड़ू किया खाला।

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: करना पड़ता है। खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी करक में फाल 2026 के लिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिले

रेडियो किलियरों पर भी करती हुई मेरी आवाज हर धड़कते दिल तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, आप वाबस्ता हैं रेडियो अमन 88.4 टांग के साथ। आपका मेजबान आरजे अंस अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ चाहता है और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से वेलकम जी आयन पखैर आखले सत बिस्मिल्ला। बिल्कुल खवातीन हजरात, उम्मीद करता हूं तमाम सुनने वाले जहां कहीं भी होंगे सेहत वाली जिंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसते रखे, मुस्कुराते रखे और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। उम्मीद करता हूं जनाब मेरी बहनें हैं, भाई हैं, मुझे जहां से भी सुन रहे हैं आप लोग बिल्कुल वेल एंड गुड होंगे और सेहत वाली जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि जनाब सेहत इंसान की जब तक बेहतर ना हो तो इंसान की जिंदगी में मजा नहीं रहता। सो सेहत आपकी जिंदगी में बेहद जरूरी है। सो जनाब अपनी सेहत का जो है बहुत ज्यादा ख्याल रखें, चाहे आप जहां से भी हैं, चाहे आप टांग से सुन रहे हैं, चाहे आप मुझे वजीरिस्तान से सुन रहे हैं, इंशाल्लाह आपकी जो किस्म की भी बीमारी है उसका तसली बख्श इलाज और शिफा दवाखाना पर किया जाएगा। सो वेलकम बैक लिसनर्स, सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं जो कि अलशिफा दवाखाने की खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में डेली जो है 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पेश किया जाता है। सो जनाब आपको कोई भी किस्म का मसला है, आप हकीम साहब से पूछना चाहते हैं इस लाइव शो में कॉल के जरिए SMS के जरिए, तो बिल्कुल आप कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं और हकीम सैयद मशकूर मशाह साहब से सेहत के हवाले से सवाल पूछ सकते हैं। सो सामीन इकराम, इस वक्त मेरे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक टाइम हो चाहता है 7:04। सो आपको कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है और आप हकीम सैयद मशकूर मशाह साहब से पूछना चाहते हैं, सो आज का शो तमाम लिसनर के लिए है जिनका कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है और आप हमारे हकीम साहब से पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं 0319-55-23-404 पर, 0319-55-23-404 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा नंबर है P2CL नंबर 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं और हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब से सेहत के हवाले से सवाल पूछ सकते हैं। जनाब सो सेहत के हवाले से आपका कोई भी सवाल है आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं 0319-55-23-404 पर, और इंशाल्लाह आज की तरह कल भी अलशिफा दवाखाना सारा दिन खुला रहेगा। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस्त ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी। बिल्कुल जनाब जिसम हम पुख्तना जमुदा प्रोग्राम अरबी जी सासोलता प्रोग्राम के हर कले वायमा ग्रान अरबिदुन को सेहत पैगाम सासो पर खिदमत के अलशिफा दवाखाने खसूसी तंसर पेश करूँ। अगो खयान दे अगवरुना सुख द मुख्तलिफ बीमारियां चिगिर शिविर मसलन द मेदी दर्दा द गुंडू दर्दू नदी दजड़ा मसाइल दी आय चीरे अजियाथे बीमारी विस्तासो इंशाल्लाह हर किस्म बीमारी इलाज पाल शिफा दवाखानी बने कीगी। अवग्रान वायुदुन को अवल में हम सो फिरती दर तबील दी चे देसी तरीका इलाज आसान दे अरसान दे और बेजरर तरीका इलाज दे। बिल्कुल जनाब दे इच किस्म हम साइड इफेक्ट नस्ता चो के हम इस्तेमाल हुई इनशाला बडीरखा और डेरा जबरदस्त रिजल्ट देवर मिलावेगी और इंशाल्लाह सबाब दवाखाना वाड़ ब्रज अखला से भी जनाब अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज़्द ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी के। तो बिल्कुल जनाब जितने मेरी भेड़िया बिरा में कुछ रह के सुन रहे पैन तो आपको मैं प्रोग्राम में वेलकम आदा अजड़ के अलशिफा दवाखाना दे खसूसी ताउन अल्तवारी खिदमत पेश की तपिया में यानी के सेहत का पैगाम। बिल्कुल जनाब एक ऐसा प्रोग्राम एक ऐसी ट्रांसमिशन जिन्हें सेहत के हवाले गाल की वे सेहत के हवाले कोई भी मसला है पिया तो तुसा हकीम साहब को पुछना चाहते हुए तो बिल्कुल जनाब तुसा कॉल कर सकते हुए 0319-55-23-404 इसको अलावा इनशाला अज भी अलशिफा दवाखाना सारा नहीं खुला है ते इनशाला कल भी सारा नहीं खुला हो सी अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस्त ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी। बिल्कुल जनाब तुम्हारी सेहत के वास्ते हमेशा हाजिर हो सी तुम्हारी खिदमत इच अलशिफा दवाखाना ते अलशिफा दवाखाना ते एक ऐसे काबिल तजर्बाकार हकीम मौजूद हैं जिन्हें को हकीम सैयद मशकूर मशाह साहब आखा मैंने
بالکل خواتین و حضرات حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب جو کہ دیسی طب کے ماہر حکیم ہیں اور پچھلے 30 سال سے دیسی طب سے وابستہ ہیں. سو آپ کا اگر دیسی طریقہ علاج کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں, آپ دیسی طریقہ علاج کے قریب ہونا چاہتے ہیں, سو بالکل آپ الشفا دواخانہ تشریف لائیں. سامعین کرام دیکھیں جو دیسی طریقہ علاج ہے یقین کریں اس کا کوئی قسم کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مؤثر رزلٹ اس کا ملتا ہے. باقی جتنے بھی طریقہ علاج ہیں نام تو ہم نہیں لے سکتے جناب, جو طریقہ علاج ہیں وہ آپ مرتے دم تک کھاتے رہیں گے ان کی دوائیاں, یعنی کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ وہ دوائیں کھاتے رہیں گے تو آپ کی جو بیماری ہے وہ دب جائے گی. لیکن دیسی طریقہ علاج ہے, دیسی طریقہ علاج اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ آپ کی بیماری کو جڑ سے ختم کرنا ہے. سو اگر آپ بھی اپنی بیماری کو جڑ سے ختم کرانا چاہتے ہیں, وقتی دوائیوں پر آپ خرچہ کر رہے ہیں, تو اس سے بہتر ہے آپ اپنی بیماری کو جڑ سے ختم کرائیں.

0: जरूरत ही नहीं
1: ऐसी बात है कि हम सब देखिए हमारे लोगों को यहाँ तक भी समझ नहीं आती है, एक अब मलेरिया है और टाइफाइड है,
0: सही है।
1: जो बंदे भी मैं अब इलाज का नाम नहीं लूंगा जहां से भी इलाज करा रहे हैं, उस बंदे को हर साल मलेरिया टाइफाइड होता है,
0: सही है।
1: यानी कि उसको जो मलेरिया टाइफाइड है वो उसको इतनी दवाई दे देते हैं कि वो मतलब एक सीजन जो है ना उसको अच्छा गुजर जाता है, फिर जब वही मौसम आता है आप अक्सर देखोगे कि हम सब जो लोग कहते हैं बड़ी पुरानी टाइफाइड है तो वो वही इन्हीं इलाजों के चक्रों में पड़ते हैं, 20,000 की 15,000 की दवाइयां लेते हैं, सो उसकी वजह से जो है ना बड़ा इनको
0: वो बैक्टीरिया वक्ती तौर पर तो दबा देते हैं ना, लेकिन उसका मुस्तकिल खत्म नहीं करते। बाकी यहाँ जो बात हुई है देसी जड़ी बूटियों की या स्टेराइड्स की,
1: ऐसी बात
0: तो
1: है,
0: ऐसी कोई चीज नहीं होती। लोगों ने करा हुआ, हाँ कुछ करते भी होंगे, लेकिन वो जो करते हैं वो गलत करते हैं,
1: ऐसी बात है बिल्कुल।
0: और दूसरी बात यह है कि आप कुदरत ने जितना आपको इलम दिया है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो, क्योंकि आपने अपनी नेकनामी वो आपके अपने हाथ में ही है। आप बेहतर तरीके से काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपका एक नाम बन जाएगा। अगर आप गलत करेंगे कितना अरसा कर लेंगे, कुछ अरसे बाद आप बिल्कुल खत्म हो जाएंगे।
1: बिल्कुल ऐसी बात।
0: उससे बेहतर है कि आप जो कुदरत ने जड़ी बूटियों को एक नेचुरल हालत में पैदा किया है,
1: हाँ जी,
0: आप उसे उसी हालत में उसी तरीके से आप इस्तेमाल कराएं,
1: ठीक है,
0: तो उसका रिजल्ट आपको मिल जाता है। अब बेशुमार ऐसे हैं कि आप देख लें, ये अब सीजन सर्दी का शुरू होने वाला है, खांसी नजला जुकाम ये आम होगा,
1: ऐसी बात।
0: अब लोग कुछ भागते हैं शरबतों की तरफ, कुछ भागते हैं टीकों की तरफ,
1: ऐसी बात है।
0: लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जाके पंसारी से जड़ी बूटियां लाते हैं, कावा तैयार करते हैं, जुशांदा बनाते हैं, जुशांदा पीते हैं, गला ठीक हो जाता है,
1: ऐसी बात है बिल्कुल।
0: अब उसमें कोई स्टेराइड नहीं है,
1: हाँ जाहिर सी बात है, कोई भी स्टेराइड
0: आप उसमें वो चीजें लेते हैं, खत्मी ख्वाब खुबाजी उनाब लाते हैं, खुद लाके उसका पानी में उसका काढ़ा तैयार करते हैं और वो जुशांदा पीते हैं,
1: ऐसी बात है।
0: इसी तरह है कि जब जड़ी बूटियों को आप अपने तरीके से अपने इस्तेमाल करते हैं तो आप उसका बेनिफिट भी ले लेते हैं। लोगों ने खामखा उसको बदनाम कर दिया है, स्टेराइड स्टेराइड स्टेराइड का भी लोगों को सही तौर पर पता भी नहीं कि वो है क्या चीज है। बहरहाल आप तिब को सही तरीके से इस्तेमाल करें,
1: बिल्कुल,
0: और इंशाल्लाह उसके सही तरीके का रिजल्ट भी आपको मिलेगा।
1: ऐसी बात है, क्योंकि ख्वातीन हजरात देसी तरीका इलाज जो खास तौर पर आपको टांक में अलशिफा दवाखाना पर ही मिलेगा, बाकी उनका मैं नहीं कह सकता, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो अलशिफा दवाखाना है, अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज़्द ट्रैफिक प्वाइंट टांक सिटी, इंशाल्लाह यहां पर आपको प्योर देसी तरीका इलाज मिलेगा, देसी जड़ी बूटियों से तैयार शुदा अदवियात हैं। सो इंशाल्लाह देखें जी, मैंने आपको पहले भी बताया है कई मरतबा कि आपने कोई ऐसा मौलवी देखा है जो हफ्ते में एक मरतबा आता है सिर्फ किसी गांव में किसी इलाके में, ना उसके पास कोई डिग्री होती है ना उसके पास, और वो हर पेशेंट को जो है ना एक ही किस्म की दवाइयां दे रहा होता है, तो उनसे आप बचे खुदारा जो एक दिन के लिए आते हैं। और जो मतलब कि अभी मैं आपको अलशिफा दवाखाना का बता रहा हूं, ये एक रजिस्टर्ड इदारा है माशाल्लाह से, हमारे मुस्तनद हकीम हैं, इनके पास जो है अपने क्वालिफाइड हैं ये, अपना जो इनका एक एसोसिएशन है उससे ये वेरीफाइड है, और जो आपके इलाकों में आते हैं एक दिन के लिए या अक्सर एक ही दिन के लिए आते हैं, ऐसी बात है ना हकीम साहब?
0: हाँ बिल्कुल, कुछ लोग आते हैं ट्रिप पे, बस एक दिन गुजारा हफ्ते में और उसके बाद आगे पीछे हो गए, लेकिन
1: अच्छा। और हकीम साहब वो हर पेशेंट को दवाई भी एक ही किस्म की दे रहे होते हैं,
0: जाहिर है उन्होंने एक नफल तुली एक ही हिसाब से रखी होती है,
1: ऐसी बात है,
0: कि मैदे के भी वही देनी है, दर्दों को भी वही देनी है, उनका बकौल उनके यार ये हमारी एक जो गोली है ये तमाम मर्जों पर काम कर,
1: ऐसी बात है, ये सरासर झूठ है,
0: तो इस तरह नहीं होता। और सोच के समझ के मरीज की तशखीस करके तभी जाके उसका इलाज होता है, ये मजाक तो नहीं है किसी
1: ऐसी बात
0: के
1: है साथ। तो जितनी मेरी बहनें भाई सुन रही हैं, अक्सर आपके इलाकों में भी ऐसा कोई बंदा हफ्ते में एक दिन आता होगा, तो उनसे आप बचें, वो आपको नुकसान भी दे सकता है, खुदारा अब वो कौन सी दवाइयां बनाता है, आपको कौन सी दवाई देता है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन आपको मैं यही कहूंगा कि उनसे आप बचें, जो आपके शहर में आपके गांव में हफ्ते में एक दिन आता है उनसे आप बचें, और एक क्वालिफाइड और एक मुस्तनद हकीम की तरफ आप आएं। देखें जी, आपके शहर टांग में अब इस्लामाबाद रावलपिंडी के इतने काबिल हकीम अलशिफा दवाखाने में अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। हकीम साहब मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले 30-32 साल से 28 साल से 29 साल से जो है ना ये देसी तिब से वाबस्ता है, حکیم صاحب کا 30-32 سال کا تجربہ ہے اس کام میں اور پاکستان کے بہت سارے شہروں میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں, تو ان کو اب موقع ملا ہے ٹانگ کی عوام کا خدمت کرنے کا. تو سامعین, آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہے, ایک بہت اچھا موقع ہے. جتنے بھی ٹانگ کے سامعین ہیں, چاہے مضافات سے, گاؤں سے سن رہے ہیں یا مجھے وزیرستان

अभी सलाम भाई, मेरा आज पहला दिन है और मेरे दोस्त ने कहा कि रेडियो सुनो, बहुत मजा आएगा। मैंने कहा ठीक है। जब मैंने सुना ये सच में बहुत मजेदार है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला सुकदर करसी बस नजर खुले रहे। तो जमारूर खबर के हुए कि जमाखूर खबर के हुए बाहर लेरे मन से रेडियो बिल्कुल आवर रोजाना का प्रोग्राम लगी सी दो बजे ने वाखर तर दो बजे पर दिन लवाज तमंग ट्रांसमिशन नशरियात दो सहर दो शपगु बजे ने वाखर तर मसूतन तर दुल से बजे पर तमंग नशरियात असोरे दले शखा।

0: जी जनाब, उन्हीं प्रोडक्ट्स की डिटेल हमारे पास हर रोज होती है और किसी न किसी एक प्रोडक्ट की डिटेल हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि आपके इस मसले के लिए कुदरत के खजानों में जड़ी बूटियों के अंदर कौन सी ऐसे अज्जा हैं कि जिनके अंदर आपके लिए शिफा छुपी हुई है। तो आपके बहुत सारे मसाइल वो स्किन को लेकर हो सकते हैं, वो आपकी सेहत को लेकर हो सकते हैं, और हमारा हर इलाज, हमारा हर तरीका, वो हर वो प्रोडक्ट जो हम आप तक पहुंचाते हैं, हमारी भरपूर कोशिश होती है कि ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो, और आपको कुदरती तरीके से, कुदरती अज्जा से हम अल्लाह ताला के हुक्म से शिफा पहुंचाएं। जी जनाब, ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो कैसे नेचुरल पाकिस्तान की वेट कम, पेट कम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आप अपने जिस्म की चर्बी को सिर्फ 15 दिन के अंदर उससे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं कि 15 दिन के अंदर ये प्रोडक्ट आपके जिस्म से फालतू चर्बी को पिघला कर आपके जिस्म से खारिज कर देती है। इसी तरीके से अगर आप जिस्मानी कमजोरी का शिकार हैं और आप मर्द हैं या औरत हैं और आपको कमजोरी का सामना रहता है, तो केसन ताकत प्लस हमारा एक फार्मूला है, ठीक है जनाब। सुफूफ जिसको दूध के अंदर शामिल करके आपने इस्तेमाल करना होता है, तो आपको पहले दिन से ही ये प्रोडक्ट बताती है कि इस प्रोडक्ट ने आपके जिस्म में कितनी एनर्जी भर दी है। अगर आप पुराने से पुराने दर्दों का शिकार हैं, जैसे जोड़ों का दर्द है, पट्टों का दर्द है, कमर का दर्द है, अर्कोनिसा है, शेटी का पेन है, जिस्म के किसी भी हिस्से में आपको एक अरसे से दर्द है, आप वजन नहीं उठा सकते, चलने फिरने में मसला है, नमाज पढ़ने में मसला है, उठने बैठने में मसला है, तो हमारा शिफाए दर्द आयल यानी कि जो शुतुरमुर्ग की चर्बी से बनाया गया है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका हाजमा दुरुस्त नहीं रहता, आपको खट्टी डकारें आती हैं, आपको गैस का मसला है, आपको तेजाबियत का मसला है, तो आप हमारा हाजमा कंट्रोल सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ब्यूटी के प्रोडक्ट्स के अंदर एक बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास। केसन नेचुरल पाकिस्तान वो कंपनी है जो आपको आपकी खूबसूरती के लिए 7 किस्म के साबुन तैयार करके दे रही है। उपटन से बना हुआ साबुन, चावल से बना हुआ साबुन, इसके अलावा कोजिक एसिड से बना हुआ साबुन, ग्लूटावाइट से बना हुआ साबुन, गोट मिल्क से बना हुआ साबुन, नीम और टी ट्री से बना हुआ साबुन, ये वो तमाम साबुन हैं जो आप रोजमर्रा लाइफ में जब इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर एक निखार आता है, चमक आता है, खूबसूरती आती है। इसी तरीके से हमारी जाफरानी क्रीम है, इसी तरीके से हमारा जो है ग्लूटावाइट क्रीम है, उसके साथ साथ जो है हमारी हैंड एंड फुट क्रीम है, क्रैक रिलीफ क्रीम है, लिप ऑयल है, लोशन है, ये सारी प्रोडक्ट आपकी खूबसूरती के लिए हैं। और उसके साथ साथ फेस वॉशेस की बहुत बड़ी रेंज है जिसके अंदर ग्लूटावाइट फेस वॉश है, लवली फेस वॉश है, उसके साथ साथ टी ट्री फेस वॉश और चारकोल फेस वॉश के साथ साथ व्हाइटनिंग मैजिक, जिसको हम कहते हैं व्हाइटनिंग मैजिक अर्जेंट फेशियल।
1: जो पर्दा था निगाहों पर वो इश्क ने हटा डाला।
0: जनाब, आप अपने शहर टेरस मिल खान टांक और पहाड़पुर में तकरीबन हर छोटे बड़े दुकान पर हमारे प्रोडक्ट्स तलब कर सकते हैं और अपनी स्किन को नरिश कर सकते हैं, अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं, अपने आप की बीमारियों को खत्म कर सकते हैं केसन नेचुरल पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर। कुछ बातें जो अक्सर हम अपने घरों के अंदर सुनते हैं, बड़ों से सुनते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई हकीकत भी होती है, लेकिन उन बातों से बढ़कर भी कोई हकीकत होती है जो हमारे सामने नहीं आती। जैसे कि जब हम बात करते हैं घर के अंदर बरकत होनी चाहिए, तो बीइंग अ मुस्लिम, मुसलमान होने के नाते हम अपने घरों के अंदर वो सारे काम करते हैं जिससे जाहिरी तौर पर हमें लगता है कि इस अमल से जो है हमारे घर के अंदर बरकत आएगी। तो क्या कौन से ऐसे काम होते हैं जो हम बरकत के तौर पर करते हैं, ऐसा करेंगे तो बरकत, यानी कि सुबह की नमाज पढ़ते हैं, दिल के अंदर ये ख्याल होता है कि यार अब सुबह की नमाज पढ़ें, घर के अंदर बरकत होगी। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी कहावतें भी हैं कि झाड़ू देना, सुबह के वक्त जल्दी से बर्तन धोना, ऊंची आवाज में कुरान पाक की तिलावत करना, रोटी के टुकड़े जाया हो रहे हों तो उन सुबह बचा लेना, और खाने के बर्तन अच्छे तरीके से साफ करना, सर के ऊपर टोपी रखना, हाथ के अंदर हाथ में तस्बीह पढ़ते रहना, रात को जल्दी सोने के लिए तैयारी करना और बुजुर्गों की खिदमत करके सोना, लेकिन अब ये वो बातें हैं जो हमें सिखाई गई हैं, जो हमें कहा जाता है कि अगर ऐसा करेंगे तो घर के अंदर बरकत होगी, और बिल्कुल ऐसा होता है, इन चीजों से बरकत होती है। लेकिन अगर ये चीजें हो और कुछ और ना हो आपके घर के अंदर, तो बरकत आपके घर के अंदर नहीं आती है। ठीक है जनाब, सिर्फ ये चीजें काफी नहीं है जो मैंने आपको गिनवाई है घर के अंदर। कहते हैं कि जनाब घर में बरकत तब नहीं होती जब आप घर में रहने वाले किसी शख्स को उसका हक अदा नहीं करते। हर वक्त घर में चीखना चिल्लाना, शोर मचाना, डांट डपट करना, इन चीजों से आपके घर में से बरकत खत्म होती है। अगरचे आप सुबह की फजर की नमाज भी पढ़ें, आप सर के ऊपर टोपी भी रखें, आप ऊंची आवाज में तिलावत भी करें, आप रोते वक्त माँ बाप के पांव भी दबाकर सोएं, लेकिन अगर आपके घर के अंदर ये हरकत हो रही है कि जनाब कोई ऐसा बंदा मौजूद है कि जिसका हक है लेकिन उसको हक अदा नहीं किया जा रहा, हर वक्त घर में गुस्से का माहौल है, एक दूसरे के ऊपर बच्चों के ऊपर चीखा जा रहा है, बच्चों को डांट टपट की जा रही है, बीवी मियां के ऊपर चीख रही है, मियां बीवी के ऊपर चीख रहा है, हर वक्त नोक झोंक नोक झोंक नोक झोंक ये चली हुई है, नरमी से कोई बात नहीं करता, मियां बीवी आपस में नरमी से बात नहीं करते, तू तरा हर वक्त टू टू टू। वो एक वीडियो चली हुई ना, वो कहती है कि ये जो मुखालिफ हुकूमत के मुखालफिन जो होते हैं, वो असेंबली के अंदर एक तकरीर चल रही थी, तो एक जो MPA थी उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब ये तो जो अपोजिशन वाले हैं ना, इनको तो टू टू टू टू खत्म नहीं होती, ये तो सारा साल टू टू टू करते रहते हैं और इनकी कभी भी हम बातें पूरी नहीं कर सकते। तो ये जिस घर के अंदर टू टू टू का माहौल हो और कोई किसी के साथ नरम लफ्जों में कोई नसीहत ना हो, तो नसीहतें की जाती ना बच्चे को थप्पड़ मार के गुस्सा करके, नहीं होगी आपके घर के अंदर बरकत। ये सारी चीजें बड़ी मानी खेज हैं और ये सारी चीजें जब किसी घर में हो रही होती हैं तो घर के अंदर से बरकत रुखसत हो जाती है। जब घर के लोग एक दूसरे के साथ नरम रवैये से बात नहीं करते, उसने सलूक से बात नहीं करते और जुबान अपने अमाल जुबान के तजाद और दिल आजारियों से एक दूसरे का दिल दुखा रहे होते हैं, ऐसे घरों के अंदर कभी बरकतें नहीं।

0: आप छाइयों से निजात के लिए हम ये प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जिसका नाम है केसन स्किन क्लियर फॉर्मूला। ये जनाब गोरा गोरा रंग और चेहरा हो हसी, ये हमारा न्यू प्रोडक्ट है केसन स्किन क्लियर, जो कि अगले हफ्ते अवेलेबल होगी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम खलील भैया, क्या हाल है? ठीक ठाक है
0: जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। ते कौन हिन सर नाल अपना ना दसे सो सही? ना शरीफ टांग शरीफ को ते वे, लेकिन ना शरीफ के रहे तोरा
1: खलील भैया टांग पठानकोट का निजामुद्दीन गाल करने।
0: निजामुद्दीन भाई सर नाल मौजूद है। निजामुद्दीन भाई किवें हाल है? चंगे वे? बहुत सारी छुट्टी की थी, दो चार दीवारा
1: जी जी कोई जाए पास गया के इस्लामाबाद गया।
0: अच्छा अच्छा, इस्लामाबाद गया वे आवे
1: जी जी,
0: अभी खैर ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। ते तुसा सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करें दे, ताकत प्लस गिन गया है अपने अबू दे वास्ते सही? लास्ट टाइम तो नकाल पे ही सारी
1: जी, वो तो मैं ही खत्म कर छोड़ाई ते वा तो दूजे नीता मैं हम को ना पिछवो दो चमचे देने ने से डबल सवेले।
0: अच्छा ठीक है जी,
1: थोड़े पेट खराब
0: थी गया,
1: मैं सिंगल
0: कर बिल्कुल सही की तरतीब एक एक चम्मच दी रखी हुई है, ठीक है सही। लेकिन बहुत सारे लोग एक दो चम्मच आसानी नाल बर्दाश्त कर वेंदे, कोई मसला नहीं थींदा उन्हां दे नाल तकरीबन।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आते ओ ई गुजरे है ना जलील को मैं तो सारा नंबर दीता हूं के मैं आपे देर वेसा मैं इधर आलो सही रहे ना आपे गाल करे सा।
0: हां हां बिल्कुल, ओ कंपनी दे हवाले डिस्ट्रीब्यूशन दे हवाले नाल से
1: जी जी हां
0: ठीक है। ताकत प्लस शिफाय दर्द कुल तो माशाल्लाह मुतासिर थे वे तो तेरे वाले से अब क्या दिन ताकत प्लस इस्तेमाल करने के बाद कीरी तब्दीली आई है?
1: बहुत अच्छी चीज है खलील भाई, तुसा को दुआ करनी है अल्हम्दुलिल्लाह। ओ दस नमाज कैट करन लग गया, पहले मंजे पे कर रहे हूं, चले जा रहे हैं मुसल्ले के बैठ के कर रहे हैं, बड़ा हो जा रहे हैं ना इजी करके तुसा को दुआ करनी है। के दूसरी गाल है कि महीने वाला जरा ओ असेंगे के महीने वाला कोर्स होती
0: 100% रिजल्ट देनी पई आंदी, ठीक है सर। तो रिजल्ट जेडी तेजी आंदी है सेल दे विच और नतीजा आंदा है तुहाडी प्रोडक्ट दा, के हर कोई गिन के बार बार गिनदा पिया, वला वला गिनदा पिया
1: जी। हां बिल्कुल, ये गाल है अच्छी शय है ना, अरे पैसे भरे नहीं है जेडे तारीफ करे नहीं है, शायद तुसाडी यही तौते के फायदा लगी गए,
0: फायदा मिल गयो ताको। बिल्कुल निजामुद्दीन भाई बहुत मेहरबानी सही,
1: दवाइयां सर जान छुट गए ते जेरे है ना, एक ही है दवाइयां जो घरता करने देवे नुकसान ही कोनी
0: नहीं, ताकत देसी नुकसान बिल्कुल। पहली गल है तोरा मैदा सेट थी वैसे ते एनर्जी ताकत को महसूस थी अपने जी समझ, क्योंकि इनकी कीमती जड़ी बूटियां उन्हां दे बड़े असरात इन जे मैं स्टार्टिंग दिसना बैठा हमने से, तो ये थी नहीं सकता कि शायद तो रिजल्ट न देवे ते फायदा न देवे। बहुत मेहरबानी निजामुद्दीन भाई, बहुत मेहरबानी,
1: बड़ी मेहरबानी।
0: ओके जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। ये स्किन क्लियर फार्मूला।

0: लेकिन आप जवान बनाएंगे आपको एक दफा फिर से, हसीन बनाएंगे आपको एक दफा फिर से, क्योंकि प्यारा लगना और हसीन लगना तो हर किसी का हक है। मेंबर शाहजहान, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सर खलील खान।
0: सर जी की हाल है? ठीक ठाक ही वे तुसा? चंगे वे प्रोग्राम सुन दे बैठे वे।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह फजर ले क्या बात है, बड़ा मजा आ गए।
0: फजर ले प्रोग्राम सुना वे सला है जी।
1: इतनी
0: मोहब्बत होनी चाहिए शो दे नाल दे कमरी दे नाल के ओ दीवार त्रै चार दफा आवे तो कौन दे नाल बैठे हो जुड़ के
1: नूट के बैठे हो
0: क्योंकि कंपनी तो आदि है तो आदा हिस्सा है। ठीक है सही। और अक्सर सारी सोनिया आपी जेले काल क्रिमिनल वादे के हमारी केसन ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है ना, मैं को बड़ा चंगा लगता है जेले वादन के सारी केसन जरी है ना सारी केसन मतलब है कि हालांकि उन्होंने तो नहीं कंपनी तो मैं रही है लेकिन वो इतनी अपनाई थे उन्होंने लोगों की सारी कंपनी के नाल के वो केसन को अपनी कंपनी आ देन।
1: कंपनी
0: हमेशा अगू तरक्की जारी करनी होंगी है और लोगों की मोहब्बत न होंगी जल एक प्रोडक्ट की जिम्मे देखो सारी कंपनी को यकदम वी त्री प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किए ना एक तेल बनाया है हेयर ऑयल। ठीक है जना तो उन्दे बाद लोग आखते गए सबको ऐसा उन्होंने आखे थे नवे नवे प्रोडक्ट बने दे गए थे बने दे गए थे बने दे गए
1: सिर्फ सर एक फरमाइश है जेरे सर्फ वाली
0: हाँ
1: वो भी कडो
0: सर्फ ही कडू थोड़े वास्ते सर्फ ही असा सर्फ यकीन करो उन्दा असा फार्मूला 10 किलो असा उन्दे सैंपल बढ़ाया है जेरे जेरे लोगों को अद्धा अद्धा किलो असा दिता से ना वो सबको आते हैं कि भाई इनका कुछ सबको स्पेशल 5-5 किलो बढ़वा के दो इतना जबरदस्त फार्मूला एरियल टाइप ब्लू सर्फ असा अपना बढ़ाया है सारा फार्मूला सारे को आ चुके हैं लेकिन असा बे प्रोडक्ट लॉन्च करने लग गए तीन देखो सर्फ को सारी तवज्जो जरा हट गई अदरवाइज सारे को सर्फ दा ब्लू फार्मूला जो है ना बिल्कुल सारे को सेफ है मौजूद है ऐसा को अगले हफ्ते भी बढ़ा के तो को दे सकते हैं। बहुत मेहरबानी सर मेहरबानी शुक्रिया मेंबर शाहजहान भाई सर मौजूद हैं जनाब केसन बेताशम।

0: जी अलहमदुल्ला जी ठीक ठाक। कौन है जी हमारे साथ?
1: ड्राइवर सजाद अहमद खंडोया।
0: सजो खंडोया सजाद भाई, सॉरी माजत करूंगा, कल आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। मैं आने वाला भी था लेकिन बस में ऐसी जगह फंस गया कि वहां से मेरे जान छुड़ाना मुश्किल हो गया था। आप जैसी मोहब्बत करने वाले लोग मिल जाते हैं ना, कहेंगे फिर वहां से आप जान नहीं छुड़वा सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो कल आप तशरीफ लाए थे?
1: जी सर लिए, एक दोस्त और भी था आ गया, बस उसको भी साथ ले गया, वो इधर था रंगपुर साइड का सर।
0: अच्छा, उसको भी साथ लेके गए थे किशन शाह पर। किशन शाह पर आपको हमारा गरीब खाना कैसा लगा फिर?
1: माशाल्लाह सर जबरदस्त, बिल्कुल सर,
0: अच्छा लगा, दिल को अच्छी लगी कि सेटिंग इन्होंने कुछ बनाई हुई है बैठने बिठाने।
1: जबरदस्त सर, बिल्कुल अच्छा लगा और अल्लाह बहुत खुश रखे सर, वो भाई बैठे हुए थे।
0: अच्छा तला, हाँ
1: जी तला भाई, उन्होंने भी खिदमत की है सर।
0: अच्छा चलो, खिदमत तो मेहमान की फर्ज बनता है ना, मेहमान जो आए जरूरी तो नहीं होता कि ग्राहक हो, मेहमान की भी इज्जत इकराम जरूरी होता है ना।
1: बिल्कुल सर, बस गए सर अल्हम्दुलिल्लाह, वेट तो किया है आपसे मुलाकात हो जाए लेकिन बस किस्मत में नहीं थी सर।
0: हाँ किस्मत में, इस दफा बहुत सारे लिसनर, एक भाई हैं जो मेरी शॉप पर चार दफा आए बेचारे, और पांचवी दफा फिर मैंने कहा कि भाई कोई दुम्बा जिबा करते हैं, मुलाकात नहीं हो रही।
1: बिल्कुल
0: नजर हसन उनका नाम है, सुन रहे होंगे, तो बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई उनके साथ भी, ठीक है। इस तरह एक दो लिस्नर दो तीन दफा नहीं हो सकी, तो भाई मुलाकात थोड़ी सी मुश्किल से होती है लेकिन हो जाती है किसी न दिन मुलाकात।
1: इंशाल्लाह सर जरूर, इंशाल्लाह जरूर होगी सर। बस कुछ लाए सर हम, वो शफाए दर्द लाए वाले साहब के लिए, ताकत बुलास लिया है सर।
0: अच्छा सारी और... ताकत वाली, पहले पहले आपने बुजुर्गों का सोचा, बड़े फर्म बाजार हो यार किस्म।
1: जिस वाले साहब के लिए हमने कहा कि बिल्कुल दर्द चाहिए, वो कहते थे ये घुटने में दर्द होता है या ये चीज ना, तो चलो मैंने कहा ये दोनों लेते हैं उनके लिए।
0: ये तो फर्म बरदार बेटी की निशानी है कि वो केसन शॉप पर गया, चाहिए तो था कि वो अपने लिए अकबर परफ्यूम लेता, चाहिए तो था कि वो अपने लिए फेस वॉश लेता, चाहिए तो ये था कि अपने लिए आए या कोई इस तरह की चीज लेता, लेकिन उसने पहले अपने बाबा जान का सोचा है। तो भाई ये तो बड़ी फर्माबरदारी है आपकी माशा।
1: बिल्कुल सर, बस वो लिया है और एक पेट कम वेट कम लिया है और एक हाजमे वाला सिरप लिया है सर।
0: अच्छा जी, हाजमे सिरप भी ले चार। अच्छा मैंने अभी तक डिटेल आपकी नहीं देखी कि आप क्या लेके गए, वरना मैं डिटेल चेक करता होता हूँ जो भी नया कस्टमर आता है ना। तो आज भी टाइम नहीं मिला, बहरहाल आपने खुद बता दिया और आपका ट्रस्ट माशाल्लाह लिया कि आप रहने वाले हैं, तो वो प्रोडक्ट ले गए हैं घर अभी या इधर पड़े अभी?
1: अभी इधर है सर, कल इंशाल्लाह जाएंगे।
0: बस कल लेके जाएं और लैया में एक तो क्या कहते हैं नाम हो जाए केसन का, बल्कि लोग एक दूसरे को बताते भी रहेंगे।
1: होगा सर, बिल्कुल होगा।
0: ये प्रोडक्ट जो लेकर गए ना आप, ये 100% रिजल्ट वाले हमारे प्रोडक्ट हैं और जरूरत की चीजें हैं।
1: जी सर, वो दूसरे भाई के लिए भी सर एक शैम्पू लिए है और एल लिया है सर उनके लिए।
0: अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है
1: जी सर, और वो ताकत प्लस भी लिए।
0: अच्छा मतलब बहुत सारी चीजें लेके गए माशाल्लाह आप जी
1: सर,
0: तो इंशाल्लाह आप इनको इस्तेमाल करें और फिर घर वालों से अपने बाबा से हमें जरूर अपना फीडबैक दीजिए। हमें पता है कि 100% रिजल्ट मिलने हैं क्योंकि आप ये सारा लोग सुन रहे होते हैं फीडबैक हमारा ना, ये हमारे चाचे मामे तो नहीं होते सारे लोग,
1: बिल्कुल सर
0: ये लोग यूजर है हमारे, तो इंशाल्लाह आप भी जब इनको इस्तेमाल करने के बाद आएंगे तो हमारे साथ फीडबैक शेयर करेंगे। सजाद भाई बहुत शुक्रिया आपका,
1: बहुत मेहरबानी,
0: थैंक यू जनाब। और ये भाई लैया में होते हैं, ये ड्राइवर है बेसिक के लिए, और यहाँ पर डेर इस्माइल खान में होते हैं और हमारा प्रोग्राम सुन रहे होते हैं इस वक्त, तो इनको लगा कि भाई जब इतने लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं और एक प्रोग्राम तीन बड़े डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, टांग डेरा और पहाड़पुर में, और हर शहर के लोग ही केसन की तारीफें कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी लैया में जो है अपने घर वालों के लिए, बाप के लिए या भाई के लिए चीजें लेकर जाऊं। तो बेस्ट ऑफ लक भाई, और इंशाल्लाह आपको ढेर सारे रिजल्ट मिलेंगे। मोहम्मद असद पहाड़पुर से हमें सुन रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। अंकल असद टांग से हमें सुन रहे हैं, मैसेज करते हैं आपके लिए, खास दुआ जन्नत के महलों में हो महल आपका। वाह जी वाह, क्या कहने, फूलों की वादी में हो शहर आपका, सितारों के आंगन में हो घर आपका, और जन्नत में हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसी आपका। आय हाय हाय हाय हाय, इससे बड़ी इससे कीमती क्या कोई और दुआ हो सकती है, यकीनन नहीं हो सकती है। अंकल असद आपका बेहद शुक्रिया, आप अपनी इतनी मोहब्बतों से नवाजते हैं, अपनी कीमती दुआओं में हमें याद रखते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ कौन मौजूद है, हमजा बलोच मौजूद है भाई मेरा, कुरई से मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। एंड उसके बाद है अस्सलाम वालेकुम खलील भाईजान और सबको सलाम अदनान, बात कर रहा हूँ अवान

मुखे रेल सुषमा समुदाय बेरा वलमा सब से पेशमान बादशाह से डेरे जोरवर मुड़न के जी बावर बादशाह वेलमा वेली चोलो

कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जुकुन फयकून का मालिक है, एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: जो चीज अप्लाई करने लगे हैं आया वो कारामद भी होगी या नहीं होगी, क्योंकि हर एक जिल्द एक जैसी नहीं है,
1: बिल्कुल ये
0: फर्क है।
1: हाँ,
0: अब उसमें कुछ चीजें सेंसिटिव हैं और वो आके फिर थोड़ा सा असरअंदाज देती हैं, जिसके बाद में फिर निशानात और इफेक्ट्स वगैरह साबित होते हैं। जैसे आजकल केमिकल्स की क्रीम है, लोशंस है, उनके जरिए हो रहा है, तो उसमें अपनी जिल्द को पहले समझना जरूरी है,
1: ठीक है,
0: उसके बाद कोशिश करें कि आप किसी मुआलिज से मशवरा भी कर लें और उसके मुताबिक फिर आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उसमें आप बहुत बेहतरी फायदा ले सकते हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि जिल ये जो है दाने या पिंपल्स,
1: हाँ जी,
0: तो आखिर बनते ही क्यों है,
1: ऐसी बात है बिल्कुल।
0: अब जिल्द में क्योंकि बहुत से देखें तो बारीक बारीक मसाम है,
1: बिल्कुल ऐसी बात है,
0: छाननी की तरह के, जिसमें से पसीने की शक्ल में मुख्तलिफ जो फासद मादे भी हैं या हमारे नमकियात हैं वो जिस्म से फिर खारिज होते हैं,
1: बिल्कुल,
0: इनसे बाजुकात ऐसा है कि तेल की तरह भी जल्द से खारिज हो जाते हैं,
1: ऐसी बात है बिल्कुल।
0: तो अब जब उसमें ऑयल की मिकदार बढ़ जाती है तो फिर जो उसके मसाम हैं,
1: ठीक है,
0: वो तकरीबन बंद हो जाते हैं और उससे फिर जब बंद होंगे तो वो चीजें फिर ये कह लें कि ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स और ये सोजिश वाले दाने और ये चीजें फिर साबित हो जाती हैं। अब उसमें ये देखना यही है, उसके मुताबिक फिर उसका इलाज है। बात तौर पर ऐसा होता है कि जब हम बलोगत के पीरियड से गुजर रहे होते हैं तो वो बच्चे हैं या बच्चियां तो उसमें हार्मोन्स भी तब्दील हो
1: रही है, बिल्कुल तब्दीली होती रहती है।
0: जब हार्मोन्स की तब्दीली होगी तो उसकी वजह से भी जो ऑयल है हमारी जिल्द में उसकी पैदावार बाज़ुकात बढ़ जाती है,
1: ऐसी बात है
0: तो
1: बिल्कुल।
0: इसलिए भी बाज़ुकात ये होता है कि नौजवानी में कह लें या छोटी उम्र में कह लें ये एक्नी वगैरह और ये चीजें ज्यादा जो है वो आम भी हो जाती है,
1: ऐसी बात है बिल्कुल।
0: अब ये बात ये है कि ये मसला जो ज्यादातर

0: केमिकल्स कुछ जरिए ऐसे कि जो बाद में आपकी जिल्द पे बहुत ज्यादा
1: हकीम साहब वैसे छोड़ जाते। अगर बताया जाए तो मेकअप टोटली जो है वो केमिकल ही होता है।
0: है तो केमिकल ही,
1: कोई नेचुरल चीज तो नहीं है। अगर कोई बंदा कहता है, कोई जिसका पार्लर है जनाब, अगर वो आपको कहता है कि मेरी चीजों में कुदरती है, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना हकीम साहब।
0: ऐसा नहीं हो सकता। पहले वक्तों में देख लें, सबसे पहले ज्यादा हमारे बचपन में तो ज्यादा तिब्बत क्रीम इस्तेमाल होती थी और उसको लोग इस्तेमाल, बल्कि अब तक वो चल रही है। तकरीबन मेरी भी एज 60 के करीब पहुंच रही है और मैं उसे मुसलसल देख रहा हूं। तो चीज ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अभी भी केमिकल से मुबर्रा हैं,
1: ऐसी बात
0: है, और वो नुकसान नहीं देती। या फिर यही है कि देसी में तो आप लोशन तैयार कर सकते हैं
1: अपनी ऐसी बात है,
0: अपने चेहरे की सफाई के लिए, लेकिन केमिकल की कोई भी आप क्रीम या कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तो उसके जो इफेक्ट्स आएंगे वो फिर आप उनके लिए फिर मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे।
1: ऐसी बात इस्तेमाल करनी पड़ेगी।
0: जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो और ज्यादा मसला बन जाएगा। किसी से मशवरा करना और वो भी मुआलिज से, ताकि वो आपकी स्किन को देख के या आपकी जो हालत है उस टाइम, आपके दानों की, आपके पिंपल्स की या छाइयों की, तो वो उसको देख के फिर आपको जो मशवरा देगा,
1: ठीक है,
0: वो उसमें बेहतर आपके लिए साबित होगा।
1: ठीक है।
0: बाकी अपनी खुराक पे जरूर, खासकर मर्द हजरात जो अब बाजारी जो खुराकें हैं और खासकर रोगनी ऑयली या कह लें कि बहुत ज्यादा स्पाइसी किस्म के या मिर्चें मिसाले और ये तेल वाली चीजें, तो ये चीजें जब खाएंगे तो फिर उनकी जिल्द पे उसका असर तो आना है,
1: जाहिर सी बात है।
0: फिर वो दाने निकलेंगे। आजकल लड़के हैं खासकर स्कूल के या काले, वो ज्यादा परेशान हो जाते हैं, यार हमारे चेहरे पे दाने निकल आए और मुस्तकिल निकल रहे हैं,
1: मुस्तकिल निकल
0: तो फिर। लेकिन जब उनसे इस बारे में बात हो कि यार आपके खुराक क्या है, तो खुराक में ज्यादातर वो समोसे पकोड़े और ये चीजें जो बाजार
1: है,
0: तो वो शवारमा खा लिया जी, हमने ये खा लिया, तो ये चीजें थोड़ा सा नुकसान करती हैं। और फिर
1: सॉरी,
0: उसमें आप सहारा लेते हैं मेडिसिन का या इस चीजों का कि जो उसको रिमूव करें, लेकिन वो उल्टा और असरात दे जाती हैं।
1: हाँ,
0: देसी अद्वियात में ऐसी चीजें हैं कि जो आपकी जिल्द को नुकसान पहुंचाए बगैर आपको एक तरफ से राहत भी देती हैं और उस मर्ज से आपकी जान भी छुड़ाती हैं।
1: ऐसी बात है, बिल्कुल।
0: आप नेचुरल के जो है, नेचर के करीब आए, नेचुरल चीजें इस्तेमाल करें, तो उसमें फिर रिजल्ट जो है वो आपकी मंशा के मुताबिक आ जाता है।
1: बिल्कुल ऐसी बात है। हाँ,
0: छाइयां क्योंकि मेन किरदार अदा करती हैं, बाजे छाइयां आ जाती हैं, वो छाइयों की वजह से परेशान हो जाते हैं।
1: हाँ जी।
0: लेकिन वो ये नहीं देखते कि बाज दफा हम लोग अपना ज्यादा टाइम बाहर गुजारते हैं, या कह लें कि सूरज की रोशनी में गुजारते हैं या धूप में गुजारते हैं,
1: काम करते हैं,
0: तो उसमें फिर हमारी जिल्द पे असर अंदाज होती है सूरज की रेज, और उससे भी छाइयां। और बाज का ज्यादातर जो है वो आर्टिफिशियल जो केमिकल्स हैं,
1: ठीक है,
0: इनसे भी छाइयां आ रही हैं। फिर उसमें हमारी खुराक का भी अमल दखल है।
1: अच्छा, खुराक का तो हकीम साहब बड़ा अमल दखल होगा ना।
0: खुराक ज्यादा है, क्योंकि हमने खानी वही चीजें हैं ना, कि हम सिर्फ जबान के जायके को देख रहे होते हैं।
1: ऐसी बात
0: कि यार हमें कुछ चटपटी सी चीज मिले कोई, तो लेकिन वो जो मसाले आ रहे हैं वो भी इस तरीके के नहीं आ रहे कि आप उस पर कह सके कि यार ये बिल्कुल क्लियर है या प्योर है। सही है, उसमें भी आजकल केमिकल है। फिर उसके अलावा जो चीजें आ रही हैं वो भी हैं, तो उनका रिएक्शन तो आना ही है।
1: गोश्त है, वो तो आना ही है ना,
0: सब्जियां हैं तो वो भी फार्मी, तो ये चीजें सारी मिलके जब जिल्द पे असरअंदाज होंगी तो उसका रिएक्शन फिर इसी सूरत में आएगा कि आपके चेहरे पे झुरियां आ सकती हैं, छाइयां आ सकती हैं, दाने आ सकते हैं, पिंपल आ सकते हैं। और इसी चीज को देखने के लिए कि आप उसमें क्या डिसाइड करते हैं, तो आपको एक मुस्तनद मुआलिज से मिलना पड़ता है, ताकि वो आपकी जिल्द के मुताबिक आपको मशवरा दे सके।
1: बिल्कुल ऐसी बात है। हकीम साहब, ये बताइएगा कि अभी आपने बात की मुर्गी के, फार्मी मुर्गी के बारे में,
0: जी,
1: तो हम बाजारों में देखते हैं मतलब कि सफेद मुर्गियां जो हैं,
0: जी जी,
1: जिनको बेलर कहते हैं या ब्लीडर कहते हैं, ब्रीडर कहते हैं, सो वो हकीम साहब खुद खड़ी नहीं हो सकती,
0: ऐसा ही है,
1: और हम वो चीज खाते हैं, तो ये बताइएगा कि फार्मी मुर्गी जो है रेगुलर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं हकीम साहब, बल्कि आजकल हर जगह हो रही है।
0: पूरे मुल्क में बहुत ऐसी ज्यादा बात इस्तेमाल हो रही है,
1: तो इसका कोई नुकसान है हकीम साहब?
0: इसका अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान है। उसकी वजह है कि वो, ये बात ठीक है, और एक दो दफा दुकानदारों से

0: पे बहस भी हुई है कि वो उस पर पानी के छीटे मार रहे हैं।
1: हाँ, ये भी
0: यार ये थोड़ा सा फ्रेश हो तो वो है। मैं के इसको पानी डाल के इसको उठा रहा है कि यार खड़ी हो जा, गाहक आ गया तेरी मेहरबानी। मैं के यार ये बीमार है, उससे खुद अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा और उसी का गोश्त हम खा रहे हैं।
1: जाहिर सी बात,
2: और बड़ी शौक से
0: और शौक से। और दूसरा ये है कि जरा ये महंगी हो जाए तो लोग किलोओं के हिसाब से लेना शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं शार्ट हो रही है पता नहीं क्या।
2: ऐसी बात है, ऐसी बात।
0: हालांकि इसके मुकाबले में अगर हम बड़े गोश्त को लें, स्पेशली कट्टे के गोश्त को,
1: हाँ,
0: तो वो ज्यादा बेहतर है।
1: अच्छा, कट्टे यानी गाय का गोश्त,
0: गाय का गोश्त जो है
1: वो खाएं वो बेहतर है।
0: देखिए बिल्कुल, गाय का दूध जो है वो एक नंबर है गजाइयत में,
1: ठीक है।
0: माँ के बाद अगर कहते हैं कि नेमुल बदल है
1: तो वो गाय का दूध ठीक हो गया,
0: ठीक है। लेकिन गाय का और भैंस का गोश्त जो है ये उतना सूटेबल नहीं है,
1: ठीक है।
0: ये जूद हजम नहीं है, देर हजम है, कब्ज करता है,
1: ऐसी बात है।
0: हवा जिसम में री हवा पैदा करता है, और इसी तरह ये शेवर मुर्गी का है,
1: ठीक है। ये भी रेगुलर नहीं खानी चाहिए किम साहब?
0: नहीं, रेगुलर
1: नहीं। बड़ा गोश्त,
0: बड़ा गोश्त अगर आप खाते हैं बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन इसमें फिर आप सब्जी का इजाफा करेंगे।
1: अच्छा, आप किसी सब्जी में
0: डाल, किसी सब्जी में डाल लें, टिंडे, घिया, कद्दू, तोरी, करेले, कुछ भी डालें।
1: अच्छा, हफ्ते में एक बार तो खा सकते हैं?
0: बिल्कुल खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन जब आप एक तो सब्जी का इस्तेमाल करते हैं तो वो इसके बादीपन को खत्म करते हैं, और दूसरा इसकी तबीयत को मुतदिल करते हैं।
1: अच्छा हकीम साहब, किसी हकीम के पास जाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं, तो सबसे पहले वो आपको बड़ा गोश्त ही मना करेगा
0: वो इसी
1: परहेज में?
0: हाँ बिल्कुल, उसकी वजह है कि ये गोश्त थोड़ा सा देर हजम होता है, बादी पैदा करता है,
1: ऐसी बात है।
0: और दूसरी बात यह है कि हम लोग फिर उस तरीके का उससे तैयार भी नहीं ना सकते। हम लोग मिर्चे मिसालों की ज्यादती करते हैं, लेकिन जो चीज उसमें चाहिए अदरक वगैरह और ये सारी चीजें जो उसकी री को खारिज बदलें उसकी बादी की तबीयत को, वो हम कम इस्तेमाल करते हैं।
1: अच्छा हकीम साहब, मतलब इसका ये हुआ कि अगर एक इंसान के अंदर पांच बीमारियां हैं
0: जी,
1: तो वो पांचों मैदी की वजह से भी हो सकती हैं?
0: बिल्कुल हो सकती हैं। मैदा अच्छा। तो आपका मेन है ना, मेजर किरदार जो बॉडी में है वो आपका मैदा ही है।
1: ऐसी बात है, हाँ जी, हाँ जी,
0: उसकी
1: हाँ जी,
0: बेस पे आप चल रहे हैं, आपके वजूद की ग्रोथ है, आपकी सेहत है, वो सारी आपकी मैदे की वजह से।
1: अच्छा, वो मैदे की वजह से ही है?
0: आपके चेहरे की ग्लो है, आपके चेहरे पे रौनक है, वो आपके मैदे की वजह से।
1: अगर आपका मैदा दुरुस्त नहीं है तो आप भी दुरुस्त नहीं होंगे, ऐसी बात है। आपके मैदे का भी मसला होगा, आपके चेहरे की रौनक भी नहीं होगी,
0: ऐसा ही है।
1: अच्छा, तो
0: आपकी हिद्दत बढ़ेगी,
1: ऐसी बात है। तो हकीम साहब, अगर एक बंदा अपने मैदे का इलाज आपसे करा लेता है
0: जी,
1: ठीक है, तो वो मतलब आधे से ज्यादा मसले तो उसके हल हो जाएंगे।
0: देखिए, इसीलिए कहते हैं ना कि मैदा जो है वो मेन एक किस्म का कह ले कि हाँ, जिस तरह हम घर में दाखिल होने के लिए मेन डोर का इस्तेमाल करते हैं कि मेन दरवाजा है,
1: ऐसी बात है,
0: हम जाएंगे, तो मैदा जो है ये भी बॉडी का मेन एंट्रेंस है,
1: मेन एंट्रेंस है। ऐसी बात है,
0: इसके लिए सबसे पहले इसका ठीक होना जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: इसने ही आगे वजूद के जो हिस्से हैं उनको इसने उनका मतलूबा जो उनका हिस्सा है वो उनको देना होता है, यानी उनको ग़िज़ाइयत देनी होती
1: ऐसी
0: है,
1: बात है,
0: ताकि वो ग्रोथ करें, वो बेहतर हो, और उसके बाद जो बचता है वो फुजले की शक्ल में, स्टूल की शक्ल में, जिससे खारिज हो जाता है।
1: बिल्कुल, ऐसी बात है।
0: अब मैदा अगर आपका ठीक है तो फिर तो आपको इतने मसले नहीं बनते, लेकिन अगर आपके मैदे में तेजाबियत, गर्मी, चाहे वो खुराक की वजह से है, चाहे वो आपके पानी कम इस्तेमाल की वजह से है,
1: हाँ,
0: या कोल्ड ड्रिंक्स या ऐसी चीजें जो आर्टिफिशियल हैं या कह लें बाजारी हैं, और ये चीजें जब बहुत ज्यादा कसरत से इस्तेमाल होंगी
1: ठीक हो गया,
0: तो वो फिर इसमें तसाबियत करेंगी, गर्मी करेंगी, और मैदे में गर्मी होगी तो आपके वजूद में हिद्दत होगी।
1: बिल्कुल ऐसी
0: बात
1: है,
0: उसका असर फिर आपकी पूरी बॉडी पे आएगा,
1: स्पेशली
0: खासकर आपके चेहरे पे जाहिर होगा, और इसीलिए मैदा तंदुरुस्त रखना बहुत जरूरी
1: बहुत
0: है,
1: बहुत जरूरी है।
0: और इसलिए कहते हैं कि मैदा दुरुस्त तो
1: इंसान तंदुरुस्त, ऐसी बात है।
0: मैदे ही से आगे काम सारा चलता है, तो इसी वजह से ये पिंपल और जो ये दाने और ये चीजें सारी हैं, तो
1: है।
0: कोशिश कीजिए कि आप अपने मैदे की इसलाह करें, ताकि आपको ऐसी कोई परेशानी का सामना न करना पड़े कि चेहरे पे दाने बढ़ रहे हैं, और दूसरा ये कि उसमें से मुआद भी खारिज हो रहा है, उसमें सोजिश है, दर्द है, वरम है, तो उसके लिए फिर आपको सबसे पहले अपने मुआलिज से मशवरा करना चाहिए, और उसके बाद आप कोई भी देसी टोटका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नहीं कि वो आपके लिए बिगाड़ पैदा करेगा, हो सकता है कि वो आपको राहत दे, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि आप ایک دفعہ مشورہ ضرور کر
1: چلیں لیں. ٹھیک ہے,
0: پھر آپ اپنی جلد
1: بالکل ایسی بات ہے. تو بالکل خواتین و حضرات, آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ کے ساتھ صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں, جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. سو سامعین کرام, حکیم صاحب نے آج بات کی آپ کے چہرے کے بارے میں, وہ بہنیں وہ بھائی جن کے چہرے پر کیل ہیں, مہاسے ہیں, چھائیاں ہیں, داغ دھبے ہیں, چھوٹے چھوٹے دانے ہیں, تو جناب انشاءاللہ آپ کے چہرے پر جو مسائل ہیں بغیر کیمیکل کے انشاءاللہ آپ کا علاج کیا جائے گا الشفا دواخانہ میں دیسی طریقہ علاج سے. جس بہن کا بھائی کا چہرے کے حوالے سے مسئلہ ہے, اپنا دیسی طریقہ علاج کرائیں تاکہ آپ کو کوئی سائڈ افیکٹ نہ جھیلنا پڑے, آپ کو کوئی نقصان نہ جھیلنا پڑے, کیونکہ آپ کی جلد بڑی نازک ہے. کیونکہ اگر آپ کی عمر 15 سال ہے, 16 سال ہے, 17 سال ہے, 18 سال یا 20 سال تک ہے, تو آپ کی جلد بڑی نازک ہے. اپنی جلد کو کیمیکل اشیاء سے بچائیں اور دیسی طریقہ علاج کی طرف آئیں. انشاءاللہ حکیم صاحب کل موجود ہوں گے صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی میں. سو بالکل آپ کی بہت ساری کالز آئیں لیکن ہم پک نہیں کر سکے. سو ابھی جس بھائی بہن کا صحت کے حوالے سے سوال ہے, اپنے بھائی سے حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو بالکل آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر اور 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. میرے بھائی ریڈیو کو ساتھ بند کریں.
2: بند کر
1: لیا. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
2: جی میں نیاز بات کر رہا ہوں.
1: جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
2: سے بات کر رہا ہوں.
1: جی کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے آپ؟
2: میں حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں.
1: جی جی بولیں, کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟
2: حکیم صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, سر بہت درد کرتے ہیں اور میدہ بھی جلن کرتے ہیں بہت.
1: ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. میرے بھائی آپ ریڈیو سنیں, حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, حکیم صاحب کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ بھائی؟
0: ان کے میدے میں تیزابیت بھی ہے.
1: ہاں جی.
0: اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اپنے ٹیسٹ کرا لیں, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پتے میں پتھری بن رہی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بعض دفعہ صورتحال ایسے سمٹمز آ جاتے ہیں. اور ویسے عموماً زیادہ تر یہی ہے کہ میدے میں تیزابیت کی وجہ ہوتی ہے.
1: ٹھیک ہے,
0: اگر اس میں آپ محسوس کرتے ہیں جلن یا درد زیادہ ہے تو آپ کچھ وقت نکال کے
1: دواخانے
0: پہ آ جائیں تاکہ آپ کی نبض وغیرہ بھی, آپ کی کیس ہسٹری بھی, آپ کی باڈی سب دیکھ کے اس کے مطابق آپ کو مشورہ دیا جا سکتا ہے. یا پھر یہ ہے کہ آپ پروگرام کے بعد تفصیلاً کال کر لیں,
1: ایسی بات
0: تاکہ ہے, پھر تفصیل میں آپ سے لے کے تو آپ کو اس کا حل بتا.
1: بالکل ایسی بات ہے. سو بالکل آپ میرے پیارے بھائی تشریف لے آئیں الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی میں. السلام علیکم. تو جی آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. سو سامعین اکرام, صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں, جو کہ الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آپ کا کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہے تو آپ حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی میں حکیم صاحب صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک کل موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ آئینہ جاری رہے گا. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام
1: ورحمۃ اللہ. انس بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ بھی رکھیے. اچھا شکر ہے. میرے بھرا کون جی روشن صاحب, کیا پوچھنا چاہتے ہوئے حکیم صاحب دے کو؟ ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل, چہرے کے بارے چاہتا موضوع ہے پیا. اچھا سوچ بھی کم ہو جائے. ٹھیک ہے روشن بھائی, ریڈیو سنتے رہے اور اپنے دوست کو بھی کہیں کہ وہ بھی سنتے رہے, حکیم صاحب سے مشورہ لیتے ہیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی حکیم صاحب, شہد کی مکھی نے بھائی کو کاٹ لیا ہے, کہتی ہیں اب جلن بھی کم ہو جائے اور سوجن بھی کم ہو جائے, تو ایسی کیا چیز جو ہے نا موقع پر استعمال کریں؟
0: آپ اگر خالص شہد ہے وہ بھی استعمال ہو گیا, اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے گھر میں یا اسپرٹ پڑی ہے,
1: ٹھیک ہے
0: آپ اسپرٹ بھی لگا سکتے ہیں, तो उससे यह है कि जलन कम हो जाएगी।
1: ठीक है, और सोजन हकीम साहब?
0: सोज उतर जाती है कुछ टाइम बाद इसकी खुद ब खुद। हाँ, बहुत ज्यादा मक्खियां या इकट्ठी काटे तो फिर थोड़ा सा मसला बन सकता है, फिर जाहिर बात है कि उसकी जो है मेडिसिन फौरी तौर पे लेनी पड़ती है। लेकिन अगर एक आध मक्खी ने काटा है तो कुछ देर बाद इसकी सोज उतर जाएगी।
1: चले ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से मेरे भाई? इंशाल्लाह हकीम साहब सवा मौजूद भी क्लिनिक मंदे सवा मल 8 बजे नवाला द मखाम सलोर बजे पूरे।
2: हेलो
1: जी जी हकीम साहब, इंशाल्लाह सवा मौजूद भी अखबल क्लिनिक के।
2: अच्छा
1: हाँ हाँ, इंशाल्लाह सासु राशि इंशाल्लाह सासु का मसला वा बहल छी।
2: चलो सही है, मसरे दो तरी मरीजान ज्यादा टोल
1: बदल रहे हैं। बिल्कुल रावड़े इंशाल्लाह हकीम साहब मौजूद भी।
2: चलो
1: अल्लाह हाफिज जी। हकीम साहब प्यारे भाई ने कल पहाड़पुर से कॉल की थी
0: जी जी,
1: और कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हकीम साहब कल मौजूद होंगे, मेरे 2-3 पेशेंट हैं उनको लाना है हकीम साहब के पास पहाड़पुर से। हकीम साहब आप खुद भी बता दीजिए कि आप कल मौजूद होंगे।
0: मैं सुबह इंशाल्लाह 8 बजे से 4 बजे तक जो रूटीन है दवाखाने की उसके मुताबिक मैं अपने क्लिनिक पे ही होऊंगा
1: इंशाल्लाह।
0: तो आप बिल्कुल आ सकते हैं और
1: अपना चेकअप
0: बिल्कुल, और उसके बाद जो बेहतर हुआ वही मशवरा। देखें बाज अवकात हमारे कंसेप्ट ये भी है, बाज लोग ये समझते हैं कि यार अगर हम दवा खाने पे जाते हैं तो हमें लाजमी दवाई भी लेनी।
1: ऐसी बात है बिल्कुल।
0: लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा नहीं है। ये एक प्रोग्राम जो है ये अवेयरनेस के लिए है,
1: आगाही के लिए, पैगाम देने के लिए।
0: आपको एक पैगाम देना है कि अगर आप किसी भी मसले से 2-4 हैं,
1: बिल्कुल ऐसी बात
0: तो
1: है,
0: ये लाजमी नहीं कि आप उसका इलाज कराने चल पड़े।
1: ऐसी बात है। हाँ
0: आप सिर्फ आके उस पे मशवरा ले सकते हैं, अगर आपका दिल करता है, आपको कोई बात दिल पे लगती है,
1: ठीक है,
0: और फिर आप उसके इलाज के बारे में भी बात कर सकते हैं।
1: ऐसी बात है बिल्कुल।
0: अदरवाइज आप सिर्फ मशवरा कर सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं कि मैं कौन सा लाहे अमल ऐसा अख्तियार करूं,
1: ठीक है,
0: कि जिससे मैं कम से कम अपने अपनी रूटीन में अपने मर्ज में कोई तब्दीली ला सकूं। तो मेरी सिर्फ यही अपने लिसनर से है कि आप ये चीज ना जहन में रखें कि हमने वहां जाके दवाई खरीदनी है, क्योंकि आप पैसे से इलाज तो खरीद सकते हैं लेकिन पैसों से शिफा नहीं ले सकते।
1: ऐसी बात है, शिफा
0: अल्लाह ताला की तरफ से है, और वो कहाँ से है ये वही बेहतर जानता है।
1: बिल्कुल,
0: आप सिर्फ अपने बारे में मशवरा कर सकते हैं, और अगर मैं अपने में एक किस्म का फखरी महसूस होगा अगर मैं आपको कोई ऐसा मशवरा देता हूं या कोई ऐसा नुस्खा या कोई ऐसा टोटका बता देता हूं जो आपके लिए बेहतर साबित हो, तो उसमें मुझे अपने इलम पे फखर होगा। तो इसलिए आप इस चीज को जहन में ना रखें, आप मशवरा जरूर करें, मिलें जरूर, इसके बारे में जाने, ताकि आगे से आप किसी दूसरे को भी आगाही दे सके।
1: बिल्कुल ऐसी बात है। सो सामीन, आपका जो भी मसला है जनाब सासु चेर मसले भी सेहत हवाले सर सासु बिल्कुल तशरीफ रावड़ लसो द अलशिफा दवाखाने था, अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी के बहकीम साहब सबा व मौजूद भी सबा मल 8 बजे नवाला तमखाम सलोर बजे पूरे और मरीजानो चक्का पॉइंट बजारे साथी कसासु चीरे सेहत वाले सर सवाल भी बिल्कुल सासु दे प्रोग्राम के हम कॉल कबल सो 0963-511-488 बंदे और 0319-55-23-404 बने हम सासु कॉल कबल सो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, तो प्यारे भाई आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। सो जनाब प्रोग्राम सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं जो कि अलशिफा दवाखाने के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में पेश किया चाहता है। सो बिल्कुल खवातीनो हजरात, आपका कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है अपने मुअज्ज़ज हकीम साहब से पूछना चाहते हैं तो 0319-55-23-404 पर कॉल SMS भी कर सकते हैं और 0963-511-488 पर भी कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाई आपकी आवाज ही बिल्कुल नहीं आ रही है। सो जनाब आप जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल करें 55 23 404 پر آپ حکیم صاحب سے کال کے ذریعے سوال پوچھ سکتے ہیں, اور حکیم صاحب کل اپنے کلینک پر موجود ہوں گے صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک الشفا دواخانہ میں, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ آئینہ جاری رہے گا. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور لائیو شو میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے, حکیم صاحب سے کوئی مشورہ کرنے کے لیے, کوئی ٹوٹکا پوچھنے کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس کے ذریعے بھی حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. 0319 55 23 404 پر آپ کال کر سکتے ہیں, 0319 55 23 404 پر کال ایس ایم ایس کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ 0963 51 488 پر یعنی 0963 511 488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. ایک میسج ہے, حکیم صاحب کہتے ہیں کہ السلام علیکم حکیم صاحب, ایک وانا سے مہندی آتی ہے, انہوں نے نام بھی لکھا ہوا تو وہ ہم نہیں لے سکتے, کہتے ہیں کہ وہ بالوں کے لیے کیسی ہے. تو پیارے بھائی, اب حکیم صاحب نے استعمال نہیں کی ہے تو جی حکیم صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟
0: مہندی اب اس کے اجزاء کیا ہیں اس بارے میں نہیں کہا جا سکتا.
1: اچھا حکیم صاحب, یہ جن مہندی کے بارے میں بات کر رہی ہیں یا کر رہی ہیں نا, تو یہ بیسیکلی جو ہے یہ کالی مہندی ہے, یعنی کہ بالوں کو کالا کرنے والی. کالر ہیں حکیم صاحب, السلام علیکم.
2: ہیلو,
1: السلام علیکم.
2: ہیلو,
1: ہیلو, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام سرنگ جی.
1: اچھا رنگ یو جی, خیر خیریت دستاس طبیعت سے شد جی.
2: پروگرام کا دا نمبر صحیح
1: ہے؟ ہاں بالکل جی, دا صحیح نمبر دستاس حکیم سے پروگرام کی کال کرے گا. بالکل بالکل جی, ساس کم دکھڑا چی دسمر عمر چو کالو دے دا کڑا چی دچو کالو دے چور عمر دے دیوال بارہ کال دا. سید جی ریڈیو ور وئی حکیم صاحب سر دے بارے کی مشورہ کو. اوکے سر, سناب ڈیرا مننا جی. حکیم صاحب بھائی پتا کر رہے ہیں, ان کا بیٹا ہے 12 سال کا اور رات کو نیند میں جو ہے نا وہ دانتوں کو آپس میں جو ہے نا کڑپاتا ہے, مطلب کہ رگڑتا ہے آپس میں, تو اس کی کیا وجہ ہے حکیم صاحب؟
0: اس کی وجہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں.
1: پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا.
0: اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں اور ہو سکتا ہے اب اگر یہ دوبارہ کال کریں
1: ٹھیک ہے,
0: اور یہ بھی پوچھ لیجیے گا کہ آیا بچہ جسمانی لحاظ سے کمزور ہے,
1: یہ بھی پتا کر سکتے ہیں.
0: اس میں اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں اور اسی لحاظ سے بعض دفعہ دانت رگڑتے ہیں. تو اب چیز یہ ہے کہ آپ اس کا اگر تو شہر میں ہیں یعنی ٹانک میں سٹی میں ہیں
1: ٹھیک ہے,
0: تو آپ بیٹے کے ساتھ آ سکتے ہیں دواخانے پہ اور اس کے مطابق پھر دیکھ کے اور بچے کی صحت دیکھ کے زیادہ کلیئر بہتر صورتحال سامنے آ جائے.
1: ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ضرور دا ریڈیو در سر بند کا. ہیلو, جی میرے بھائی جو بھی آپ کال کرتے ہیں سو مہربانی کر کے یا ریڈیو سے دور ہو گیا کریں یا جو ہے نا آپ ریڈیو بند کر دیا کریں, کیونکہ یہ شو میں بہت قیمتی وقت ہوتا ہے ہمارے پاس جو کہ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو جناب آپ کا صحت کے حوالے سے یہ پروگرام ہے, اس کے بارے میں ہم صحت کے بارے میں ہی بات کیا کرتے ہیں اس پروگرام میں. دیکھیں کوئی ایسا پریشان بندہ ہوگا, کوئی ایسی بہن ہوگی, کوئی ایسا بھائی ہوگا جو کہ صحت کے حوالے سے بڑا پریشان ہوگا, ہمیں کال کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا. سو جناب آپ کا کوئی بھی سوال ہے صحت کے حوالے سے آپ اپنے بھائی سے پوچھ سکتے ہیں, میں حکیم صاحب سے پتہ کر کے آپ کو بتاؤں گا, حکیم صاحب آپ کو خود بھی بتائیں گے. آپ حکیم صاحب سے خود بات کرنا چاہتے ہیں پھر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں 0319 55 23 404 پر. حکیم صاحب کل صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے کلینک میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا چیک اپ آئینہ جاری رہے گا. حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب روزانہ موجود ہوتے ہیں اپنے کلینک میں اور روزانہ کی طرح کل بھی موجود ہوں گے اور مریضوں کا جو چیک اپ آئینہ ہے وہ جاری رکھیں گے. حکیم صاحب یہ بتائیے گا, آج ذرا سا چاول کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ نمکین چاول ہیں ہوں یا میٹھے چاول ہوں, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ یہ استعمال کرنا کھانا کیسا ہے حکیم صاحب؟
0: بہت زبردست ہے, ٹھیک ہے, میری اپنی فیوریٹ ڈش ہے, لیکن نمکین چاول.
1: نمکین یا میٹھے حکیم صاحب؟
0: نمکین.
1: اچھا نمکین,
0: نمکین چاول جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں.
1: ایسی بات ہے.
0: ہاں باقی یہ ہے کہ آپ میٹھے بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن چاولوں کی زیادتی جو ہے
1: ایسی بات ہے, ہاں
0: وہ ٹھیک نہیں ہے زیادہ.
1: ठीक है,
0: आप हफ्ते में एक आध दफा बना सकते हैं अपनी मेन्यू में अगर रखें तो चावल। और दूसरा यह है कि इसका नुकसान तो कम से कम कोई नहीं है।
1: अच्छा, इसका नुकसान नहीं है कोई।
0: लाइट सी खुराक है, लेकिन जब हम इसको और ज्यादा मसाले डाल के और उसको बिरयानी की तरफ ले जाते हैं या मुख्तलिफ डिशेज, फिर थोड़ा सा यह है कि वो हमारे मैदे पे बोझ बनाते हैं, बाद तबीयत में वो पैदा करते हैं। लेकिन आप खा सकते हैं, लेकिन इसकी ज्यादती जो है वो सही नहीं है।
1: ठीक है हकीम साहब, ये बताइएगा कि आजकल हर नौजवान इस मसले में मुबतला है, यानी कि डिप्रेशन में, तो डिप्रेशन दूर करने के लिए किन बातों पर अमल करना चाहिए हमें?
0: इस पे पीछे हमारा प्रोग्राम रहा है, तफसीलन स्ट्रेस का,
1: टेंशन डिप्रेशन के बारे में,
0: टेंशन का। देखिये, इसमें सबसे पहले तो हमें अपनी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी की रूटीन है, हमें कम से कम उस पे नजर मारनी होती है।
1: ऐसी बात
0: कि हमारे जो मामलात हैं वो कैसे हैं, किस तरह हैं, उसमें आपकी इबादत भी आ जाती है, आपकी खुराक भी आ जाती है, आपका रहन सहन भी आ जाता है, आपका लोगों से मिलना जुलना भी आ जाता है।
1: ठीक है,
0: तो जब आप मुस्बत तरीका अपनाते हैं तो फिर आप कामयाब भी रहते हैं।
1: चलें, ठीक है हकीम साहब, नशे के बारे में अगर हम बात करें, नशा आपको पता है कि ज्यादा हो गया आजकल।
0: बिल्कुल है, बिल्कुल,
1: चाहे वो जिस किस्म का भी नशा है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, तो ये बताइएगा कि हकीम साहब क्या नशे का इलाज आपके पास है?
0: देखिये, बात ऐसी हैं चीजें कि जिनके लिए दवाखाना भी अभी
1: ठीक है
0: उस तरह पेशेंट को डील नहीं करता। हाँ, उन्हें मशवरा दिया जा सकता है।
1: ठीक है, कि अगर कोई पेशेंट आपके पास ले आए हकीम साहब नशे का, यानी कि एक तो बड़ा हाई लेवल का चला जाता है ना, अगर किसी को सिगरेट पीने की आदत है या नस्वार की आदत है, तो क्या ये छूट सकती है?
0: हाँ, बिल्कुल उसके लिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो मुतासरा शख्स है उसकी कुव्वत इरादी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो खुद अपने आप में एतमाद पैदा नहीं करेगा और अपने आप में छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा,
1: ठीक है, हाँ,
0: तो फिर कोई मेडिसिन भी वहां काम नहीं करती। हाँ, ये जरूर है कि वो उसको यकदम ना छोड़े, और यकदम छोड़ी भी नहीं जाती, लेकिन आप उसको कम कर सकते हैं रफ्तार रफ्तार रफ्तार, तो आप उससे अपने आप को आजाद कर सकते हैं।
1: ठीक है हकीम साहब, एक और सवाल है, ये बताइएगा कि सिगरेट पीने से क्या फालिज हो सकता है?
0: सिगरेट पीने
1: हमने
0: से
1: काफी बार सुना है हकीम साहब।
0: देखिए, बाज दफा होता है कि जिस्म में आपके तब्दीलियां जरूर आती हैं,
1: ऐसी बात है,
0: और कुछ बॉडी में ऐसी तब्दीलियां तो वो उस तरफ आपको ले जा सकती हैं।
1: ठीक है,
0: ठीक है,
1: अच्छा,
0: लेकिन कोशिश करें कि आप सिगरेट का इस्तेमाल कम से कम करें, वरना और कुछ होना हो आप दमे के जरूर मरीज बन जाते हैं।
1: ये तो लाजमी है,
0: और फिर आप किसी काम के भी काबिल नहीं रहते, यानी आपके सीने में वो ताकत
1: ऐसी वो बात है, नहीं, वो नहीं, नहीं रहती, बिल्कुल ऐसी बात है। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम
1: जी, कौन और कहाँ से मेरी बहन?
3: जी, मैं गांव से बात कर रही हूँ, ब्लड प्रेशर जो है ना बहुत हाई रहता है ना।
1: ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है
3: जी, हाई रहता है, उसके बारे में कुछ बता सकते?

0: भी मुमकिन है। आप पंसारियों से छोटी चंदन ले सकते हैं, उसको लाके आप पीस के और
1: ठीक है हाँ।
0: छोटे चम्मच का आप चौथा हिस्सा ले लें, जरा कड़वा रखती है जायका, तो उसमें आप उसको जब इस्तेमाल करेंगे पानी के साथ
1: ठीक है,
0: तो फिर इंशाल्लाह आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा।
1: अच्छा हकीम साहब, हाई ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल भी कहा जाता है।
0: हाँ बिल्कुल है, अच्छा कोई शक नहीं है।
1: अच्छा हकीम साहब ये बताइए कि आप ब्लड प्रेशर तो ऐसी चीज है यानी कि छुपी हुई है, कल भी हमने इसके ऊपर बात की, अब एक बंदे को जो है वो कैसे मालूम होगा कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, यानी चेक किए बगैर उसमें ऐसी कौन सी लामत होंगी?
0: बाज़ का तुम्हारे सिम्टम्स बता देते हैं, अगर हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जा रहा है, कुछ चक्कर आने या कानों की जो कनपटियां हैं हमारी
1: है,
0: इनमें चुभन सी तीस सी पड़ना, और दूसरी बात है बाद का आंखों के आगे अंधेरा आ जाना।
1: अच्छा अंधेरा आ जाना, ठीक
0: है। अब वो बंदा उसको ऐसा लगेगा जैसे सारा कुछ घूम रहा है,
1: चक्कर आना यानी
0: चक्कर आ गए, उसको नजर आएगा कि मैं घूम रहा हूँ गोल गोल, वो किसी चीज को पकड़ के बैठेगा, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे मैं जमीन के साथ मैं भी घूम रहा हूँ।
1: बिल्कुल ऐसी बात है।
0: और दूसरा कि आप जिस टाइम आप में ऐसे कुछ असरात आते हैं तो आप कुछ लोगों को तो टेस्ट से पता चल जाता है, जब वो मरीज के मुआलिज के पास जाते हैं तो वो उस चीज को देखते हैं या चेक कराते हैं तो पता चल जाता है। और बाज दफा ये मरूसियत से भी आ जाता है,
1: ठीक है,
0: बाज दफा हमारी खुराक से या हमारे मैदे की खराबी की वजह से,
1: हमारी अपनी गलतियों से ये हो जाता
0: जब है। मैदा हमारा ठीक है तो उससे हम काफी हद तक अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं, और अगर हमारा मैदा थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है तो वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, लेकिन ये सही है कि ये एक कह लें कि खामोश कातिल है और ये नुकसान पहुंचाता है।
1: चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है, कहाँ से मेरे भाई?
0: शायद आवाज बहुत कम,
1: मेरे भाई आवाज आपकी बहुत ही कम आ रही है। तो जी इनकी कॉल भी जो है ना ड्रॉप हो गई है हकीम साहब, पता नहीं नेटवर्क का आज कोई इशू है
0: नेटवर्क का
1: जिसकी वजह से आवाज देना बहुत ही कम आ रही है। तो जी हकीम साहब बात हो रही थी ब्लड प्रेशर की, तो ये तो हाई ब्लड प्रेशर की हो गई। अब अगर किसी बंदे का ब्लड प्रेशर लो है तो उसके बारे में भी आप बताइएगा।
0: उसका भी ऐसा ही है कि उसको भी एक किस्म के गनूदगी और पारा गिरेगा और उसके लिए तकलीफ दे है, यानी वो भी बिस्तर पे कि यार मुझे, और उसमें वो कोमे की या बेहोशी की हालत में
1: अच्छा,
0: भी जा सकता
1: वो
0: है।
1: बेहोश हो सकता है, ठीक है।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
2: जो मैंने डेंट किया था वो बच्चे के बारे में,
1: ठीक है,
2: मैं बोल रहा हूँ दोबारा कॉल करे, इस वजह से मैंने दोबारा किया है।
1: बिल्कुल आप दोबारा आपने कॉल की है। ये जो हकीम साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं बताइएगा हकीम साहब।
2: वो थोड़ा हकीम साहब ने बोला अगर कमजोर हो,
1: हाँ हाँ, तो जी आप बताइए ना, आपका बच्चा कमजोर है?
2: आवाज नहीं आ रही
1: जी हकीम साहब। आप
0: आपका बच्चा जिस्मानी लिहाज से कमजोर भी है?
2: जी मेरा बच्चा थोड़ा कमजोर है, सही लेकिन फूला हुआ है, सही
0: फूला हुआ है,
2: जिस तरह आदमी चुस्त होता है इस तरह नहीं फूला पाने।
0: और दूसरा जो है वो उसे भूख वगैरह ज्यादा लगती है?
2: भूख तो रोज की तरह बैठ जाता है, बस चम्मच की तरह काटना है।
0: ठीक हो गया,
1: ठीक है जी। आप रेडियो सुनिए हकीम साहब बताते हैं आपको जी। हकीम
0: आप ऐसा कीजिएगा कि आप अगर सिटी में ही हैं तो आप किसी टाइम बच्चे को लेके जरा क्लिनिक पे आइएगा,
1: ऐसी बात है,
0: ताकि बच्चे की पूरी केसेसरी लेके और देख के फिर मैं उसके मुताबिक आपको मशवरा जरूर दूंगा जो बेहतर होगा,
1: ठीक है,
0: क्योंकि बच्चा सामने होगा तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा।
1: बिल्कुल ऐसी बात है। सो बिल्कुल जनाब, आपका भी अगर इस तरह का कोई मसला है, आपके बच्चे को है खाना नहीं खाते हैं बच्चे, या उनको भूख नहीं लगती है, या दांतों को आपस में रगड़ना है, या जो है उनके मुंह से लाल आना यानी पानी टपकना रात को सोते वक्त, तो बिल्कुल बच्चे हैं बड़े हैं जिनको भी जिस किस्म का भी कोई मसला है, हर किस्म बीमारी का तसल्लीबख्श इलाज किया जाता है अलशिफा दवाखाना में। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी। हकीम साहब मौजूद होंगे सुबह 8 बजे से लेकर कल और शाम 4 बजे तक, और मरीजों का चेकअप आना जारी रहेगा। हकीम साहब खुद मौजूद होते हैं सारा दिन सुबह 8 से शाम 4 बजे तक, और मरीजों का चेकअप आना जारी रखते हैं। चाहे आप टांग से हैं, चाहे वजीरिस्तान से हैं, या टांग को मजाफा से हमें सुन रहे हैं, जनाब आपकी कोई भी बीमारी है।